ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि उसने असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए हेनरी बी कागन और सोआई केन्सो को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अकादमी ने बताया कि कुछ अणुओं के दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो पक्ष होते हैं, लेकिन औषधि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को इनके केवल एक पक्ष की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति में सामान्य बात है, परंतु प्रयोगशाला में इसे दोहराना संभव नहीं था। इसके बावजूद सोआई ने केवल एक पक्ष को बनाने की विधि का पता लगा लिया। अकादमी का कहना है कि सोआई ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 76 वर्षीय सोआई का जन्म हिरोशिमा में हुआ था और अब वे टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर हैं। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पुरस्कार घोषणा कार्यक्रम में भाग लिया। सोआई ने कहा, नोबेल पुरस्कार मिलने की इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। बेशक ये मेरी जिंदगी का एक सबसे रोमांचक दिन है। लगातार तीसरे वर्ष जापान से किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। सोआई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 31वें जापानी हैं। इस संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जिनका जन्म और शिक्षा तो जापान में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अमरीकी नागरिकता हासिल कर ली। सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हुए हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से अधिक के घायल होने की खबर है। यमन में सरकार विरोधी हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के अनुसार राजधानी रियाद और दक्षिण पश्चिमी शहर अबहा के हवाई अड्डों को मंगलवार और बुधवार को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार रियाद में एक व्यक्ति की मौत हुई और 8 घायल हुए, जबकि अबहा में 2 लोग मारे गए और 28 जख्मी हुए। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन विमानों से हमले किए। ईरान के हालातों के असर से यमन में हूथी विद्रोहियों और सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के बीच तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। इस बीच अमेरिका के कई मीडिया केंद्रों ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार कर रहे हैं। अटलांटिक पत्रिका ने बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस ने रक्षा मंत्रालय से मध्यावधि चुनाव से पहले ईरानी ठिकानों पर हमले के विकल्प तैयार करने को कहा था। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने भी बुधवार को बताया कि अधिकारियों के अनुसार पेंटागन ने कुछ दिन पहले अमरीकी केंद्रीय कमान को ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई बहाल करने की तैयारी करके रखने का निर्देश दिया था। एक्सियोस ने अमरीकी और इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले हो सकती हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगलवार से बुधवार तक यूक्रेन पर किए गए रूस के भीषण हमले में 25 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। जेलेंस्की ने बुधवार को एक वीडियो में इस मामले की निंदा करते हुए कहा, पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को ये उपहार दिया है। बच्चों की हत्या, लोगों की हत्या। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन बुधवार को था। जेलेंस्की ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र चेरनी हीव में एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत से टकराई, जिसमें 5 बच्चों सहित 19 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में मानव रहित वायुयानों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन में जापान की एक तंबाकू कंपनी की सहायक कंपनी पर हमला किया है। रूस ने दावा किया कि उक्त कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए गोला बारूद का उत्पादन कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने रूस के इस आरोप का खंडन किया है। कंपनी ने NHK को लिखित में ये भी बताया कि हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने जमीनी, समुद्री और हवाई हथियारों तथा ड्रोन से यूक्रेनी रक्षा उद्योग से जुड़े उद्यमों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर एक बड़ा हमला किया है। इसमें मध्यवर्ती यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में स्थित JTI का तंबाकू कारखाना भी शामिल था। कंपनी के आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, JTI तंबाकू उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है और सैन्य उत्पादन में कभी भी शामिल नहीं रही है। वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि कारखाने पर कई बार हमला किया गया था और इन हमलों से पहले ही इसका संचालन बंद था। कंपनी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो और अधिक जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। यूक्रेन स्थित जापानी दूतावास का कहना है कि हालिया हमले में किसी जापानी नागरिक के प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। जापान के एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जापान फेयर ट्रेड कमीशन JFTC ने 4 प्रमुख जापानी बियर निर्माताओं की सुविधाओं पर छापा मारा है। उन पर बियर की कीमतों में बढ़ोतरी को समन्वित करने के लिए एक कार्टेल यानी अवैध व्यावसायिक संघ बनाने का संदेह है। टोक्यो स्थित आसाही ब्रुअरीज, किरिन ब्रुअरी, सापोरो ब्रुअरीज और संतोरी स्पिरिट्स नामक कंपनियों की घरेलू बियर बाजार में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। सूत्रों के अनुसार उन पर थोक विक्रेताओं को बियर भेजते समय उनकी कीमतों में कब और कितनी वृद्धि करनी है, ये तय करने की साजिश रचने का संदेह है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ाई थीं। गौरतलब है कि कीमतें बढ़ाने का समय लगभग एक समान था। ये चारों कंपनियां जापान ब्रूअर्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार एसोसिएशन की मासिक बैठकें होती हैं और विभाग अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों ने कीमत समन्वय को लेकर गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में बियर जैसे पेय पदार्थों का भी जिक्र था। प्रत्येक कंपनी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। JFTC ने कहा है कि वो मूल्य वृद्धि की लहर का फायदा उठाने वाले इस कार्टेल से सख्ती से निपटने की नीति अपनाएगा। JFTC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि बियर दैनिक जीवन से जुड़ा उत्पाद है और आरोप है कि ये कार्टेल उन कंपनियों द्वारा बनाया गया था जिनकी बाजार में भारी हिस्सेदारी है। अभियोजकों के समक्ष आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने की संभावना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमास।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमास्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमास।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबुत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे,
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इक,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: すみません。 金閣寺まで どう行ったらいいですか？ 101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: 乗って
1: है क्रिया
4: 乗る
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: 乗ってください
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुगु मस्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
7: さあ、行こう。
4: トラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिये प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: होकुसाई फोसो रेडियो निप्पन देस। टोक्यो からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि उसने असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए हेनरी बी कागन और सोआई केन्सो को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अकादमी ने बताया कि कुछ अणुओं के दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो पक्ष होते हैं, लेकिन औषधि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को इनके केवल एक पक्ष की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति में सामान्य बात है, परंतु प्रयोगशाला में इसे दोहराना संभव नहीं था। इसके बावजूद सोआई ने केवल एक पक्ष को बनाने की विधि का पता लगा लिया। अकादमी का कहना है कि सोआई ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 76 वर्षीय सोआई का जन्म हिरोशिमा में हुआ था और अब वे टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर हैं। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पुरस्कार घोषणा कार्यक्रम में भाग लिया। सोआई ने कहा, नोबेल पुरस्कार मिलने की इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। बेशक ये मेरी जिंदगी का एक सबसे रोमांचक दिन है। लगातार तीसरे वर्ष जापान से किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। सोआई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 31वें जापानी हैं। इस संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जिनका जन्म और शिक्षा तो जापान में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अमरीकी नागरिकता हासिल कर ली। सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हुए हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से अधिक के घायल होने की खबर है। यमन में सरकार विरोधी हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के अनुसार राजधानी रियाद और दक्षिण पश्चिमी शहर अबहा के हवाई अड्डों को मंगलवार और बुधवार को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार रियाद में एक व्यक्ति की मौत हुई और 8 घायल हुए, जबकि अबहा में 2 लोग मारे गए और 28 जख्मी हुए। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन विमानों से हमले किए। ईरान के हालातों के असर से यमन में हूथी विद्रोहियों और सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के बीच तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। इस बीच अमेरिका के कई मीडिया केंद्रों ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार कर रहे हैं। अटलांटिक पत्रिका ने बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस ने रक्षा मंत्रालय से मध्यावधि चुनाव से पहले ईरानी ठिकानों पर हमले के विकल्प तैयार करने को कहा था। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने भी बुधवार को बताया कि अधिकारियों के अनुसार पेंटागन ने कुछ दिन पहले अमरीकी केंद्रीय कमान को ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई बहाल करने की तैयारी करके रखने का निर्देश दिया था। एक्सियोस ने अमरीकी और इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले हो सकती हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगलवार से बुधवार तक यूक्रेन पर किए गए रूस के भीषण हमले में 25 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। जेलेंस्की ने बुधवार को एक वीडियो में इस मामले की निंदा करते हुए कहा, पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को ये उपहार दिया है। बच्चों की हत्या, लोगों की हत्या। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन बुधवार को था। जेलेंस्की ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र चेरनी हीव में एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत से टकराई, जिसमें 5 बच्चों सहित 19 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में मानव रहित वायुयानों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन में जापान की एक तंबाकू कंपनी की सहायक कंपनी पर हमला किया है। रूस ने दावा किया कि उक्त कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए गोला बारूद का उत्पादन कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने रूस के इस आरोप का खंडन किया है। कंपनी ने NHK को लिखित में ये भी बताया कि हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने जमीनी, समुद्री और हवाई हथियारों तथा ड्रोन से यूक्रेनी रक्षा उद्योग से जुड़े उद्यमों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर एक बड़ा हमला किया है। इसमें मध्यवर्ती यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में स्थित JTI का तंबाकू कारखाना भी शामिल था। कंपनी के आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, JTI तंबाकू उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है और सैन्य उत्पादन में कभी भी शामिल नहीं रही है। वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि कारखाने पर कई बार हमला किया गया था और इन हमलों से पहले ही इसका संचालन बंद था। कंपनी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो और अधिक जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। यूक्रेन स्थित जापानी दूतावास का कहना है कि हालिया हमले में किसी जापानी नागरिक के प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। जापान के एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जापान फेयर ट्रेड कमीशन JFTC ने 4 प्रमुख जापानी बियर निर्माताओं की सुविधाओं पर छापा मारा है। उन पर बियर की कीमतों में बढ़ोतरी को समन्वित करने के लिए एक कार्टेल यानी अवैध व्यावसायिक संघ बनाने का संदेह है। टोक्यो स्थित आसाही ब्रुअरीज, किरिन ब्रुअरी, सापोरो ब्रुअरीज और संतोरी स्पिरिट्स नामक कंपनियों की घरेलू बियर बाजार में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। सूत्रों के अनुसार उन पर थोक विक्रेताओं को बियर भेजते समय उनकी कीमतों में कब और कितनी वृद्धि करनी है ये तय करने की साजिश रचने का संदेह है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ाई थीं। गौरतलब है कि कीमतें बढ़ाने का समय लगभग एक समान था। ये चारों कंपनियां जापान ब्रूअर्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार एसोसिएशन की मासिक बैठकें होती हैं और विभाग अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों ने कीमत समन्वय को लेकर गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में बियर जैसे पेय पदार्थों का भी जिक्र था। प्रत्येक कंपनी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। JFTC ने कहा है कि वो मूल्य वृद्धि की लहर का फायदा उठाने वाले इस कार्टेल से सख्ती से निपटने की नीति अपनाएगा। JFTC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि बियर दैनिक जीवन से जुड़ा उत्पाद है और आरोप है कि ये कार्टेल उन कंपनियों द्वारा बनाया गया था जिनकी बाजार में भारी हिस्सेदारी है। अभियोजकों के समक्ष आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने की संभावना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकबुत्सुकन मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं? ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबुत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इकु,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: अनो सुमिमासेन। किनकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोट्टे
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: नोट्टे कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुग।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुग मस्सुग।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगल से बुध तक यूक्रेन पर किए जाने वाले बड़े रूसी हमले में 25 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं। जेलेंस्की ने बुध को एक वीडियो तकरीर में इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा, ये एक तरह का वो तोहफा है जो पुतिन ने खुद को अपनी सालगिरह के मौके पर दिया। बच्चों का खून और लोगों का कत्ल। वाजह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालगिरह बुध को थी। जेलेंस्की ने कहा कि एक मिसाइल शमाली इलाके चर्निहियो में एक रिहायशी इमारत को बराह रास्त लगा। उन्होंने कहा कि 19 अफराद हलाक हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। सदर ने निशानदेही की कि इस हमले में बगैर पायलट वाले तैयारों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने तंबाकू बनाने वाली एक जापानी कंपनी की यूक्रेन में कायम एक जेली फर्म पर हमला किया है, जो बकौल रूस के यूक्रेनी अफवाज के लिए गोला बारूद तैयार कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने इस हमले की तर्दीद की है। उसने NHK को तहरीरी तौर पर यह भी बताया कि हमारे तमाम मुलाजमीन महफूज हैं। रूस की वजारत दिफा ने बुध के रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने यूक्रेनी दिफाई सनत के इदारों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और बहरी जहाजों पर जमीनी, बहरी और फजाई हथियारों और ड्रोन्स के साथ जबरदस्त हमला किया है। इसमें वस्ती यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में JTI का तंबाकू प्लांट भी शामिल था। JTI के ऑफिशियल बयान के मुताबिक JTI तंबाकू की मसनूआत तैयार और फरोख्त करती है और कभी भी फौजी पैदावार में शामिल नहीं रही। बयान में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री पर मुतअद्दिद मौके पर हमला किया गया था और ये कि हमलों से पहले प्लांट में काम मुअत्तल कर दिया गया था। बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मजीद तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती, लेकिन प्लांट के तमाम मुलाजमीन महफूज हैं। यूक्रेन में जापानी सफारतखाने का कहना है कि ऐसी कोई इत्तला नहीं है जिससे पता चले कि इस नए हमले में कोई जापानी शहरी मुतासर हुआ है। जापान फेयर ट्रेड कमीशन ने मुल्क के इंसदादे इजारादारी कानून की खिलाफवर्जी के इल्जाम में 4 बड़ी जापानी बेयर साज कंपनियों पर छापे मारे हैं। शुबा है कि उन्होंने बेयर की कीमतों में इजाफे को मरबूत करने के लिए इजारादाराना घटजोड़ तश्कील दिया। आसाही ब्रेवरीज, किरिन ब्रेवरी, सापोरो ब्रेवरीज और सांतोरी स्पिरिट सभी टोक्यो में कायम कंपनियां हैं, जिनका मुल्की बेयर मंडी में 90% से ज्यादा हिस्सा है। जराय का कहना है कि इन पर यह फैसला करने की साजिश का शुबा है कि होलसेलरों को बेयर बेचते वक्त कीमतों में कब और कितना इजाफा किया जाए। इन कंपनियों ने खाम माल की बढ़ती हुई कीमतों का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ा दी थीं। ऐलानात का वक्त करीब करीब एक जैसा था। चारों कंपनियां ब्रायवर्स एसोसिएशन ऑफ जापान की रुकन हैं। जराया का कहना है कि ये एसोसिएशन माहाना इजलास मुनक्किद करती है और सेक्शन चीफ की सतह के अहदेदारान ने मुबैना तौर पर कीमतों में हम आहंगी के लिए पसे पर्दा मुलाकात की। तबादला अख्तियार में बेर जैसे मशरूबात शामिल किए गए। हर कंपनी ने कहा कि वो तहकीकात में मुकम्मल तावुन करेगी। कमीशन ने कीमतों में सिलसिलावार इजाफे से मुस्तफीद होने वाले कार्टेल से सख्ती से निमटने की अपनी पॉलिसी का इशारा दिया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि उसने असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए हेनरी बी कागन और सोआई केन्सो को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2026 का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अकादमी ने बताया कि कुछ अणुओं के दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो पक्ष होते हैं, लेकिन औषधि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को इनके केवल एक पक्ष की आवश्यकता होती है। ये प्रकृति में सामान्य बात है, परंतु प्रयोगशाला में इसे दोहराना संभव नहीं था। इसके बावजूद सोआई ने केवल एक पक्ष को बनाने की विधि का पता लगा लिया। अकादमी का कहना है कि सोआई ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 76 वर्षीय सोआई का जन्म हिरोशिमा में हुआ था और अब वे टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर हैं। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पुरस्कार घोषणा कार्यक्रम में भाग लिया। सोआई ने कहा, नोबेल पुरस्कार मिलने की इतनी अच्छी खबर सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। बेशक ये मेरी जिंदगी का एक सबसे रोमांचक दिन है। लगातार तीसरे वर्ष जापान से किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। सोआई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 31वें जापानी हैं। इस संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जिनका जन्म और शिक्षा तो जापान में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अमरीकी नागरिकता हासिल कर ली। सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हुए हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से अधिक के घायल होने की खबर है। यमन में सरकार विरोधी हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के विमानन अधिकारियों के अनुसार राजधानी रियाद और दक्षिण पश्चिमी शहर अबहा के हवाई अड्डों को मंगलवार और बुधवार को निशाना बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार रियाद में एक व्यक्ति की मौत हुई और 8 घायल हुए, जबकि अबहा में 2 लोग मारे गए और 28 जख्मी हुए। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन विमानों से हमले किए। ईरान के हालातों के असर से यमन में हूथी विद्रोहियों और सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के बीच तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। इस बीच अमेरिका के कई मीडिया केंद्रों ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार कर रहे हैं। अटलांटिक पत्रिका ने बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस ने रक्षा मंत्रालय से मध्यावधि चुनाव से पहले ईरानी ठिकानों पर हमले के विकल्प तैयार करने को कहा था। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने भी बुधवार को बताया कि अधिकारियों के अनुसार पेंटागन ने कुछ दिन पहले अमरीकी केंद्रीय कमान को ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई बहाल करने की तैयारी करके रखने का निर्देश दिया था। एक्सियोस ने अमरीकी और इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले हो सकती हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगलवार से बुधवार तक यूक्रेन पर किए गए रूस के भीषण हमले में 25 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। जेलेंस्की ने बुधवार को एक वीडियो में इस मामले की निंदा करते हुए कहा, पुतिन ने अपने जन्मदिन पर खुद को ये उपहार दिया है। बच्चों की हत्या, लोगों की हत्या। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन बुधवार को था। जेलेंस्की ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र चेरनी हीव में एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत से टकराई, जिसमें 5 बच्चों सहित 19 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में मानव रहित वायुयानों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन में जापान की एक तंबाकू कंपनी की सहायक कंपनी पर हमला किया है। रूस ने दावा किया कि उक्त कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए गोला बारूद का उत्पादन कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने रूस के इस आरोप का खंडन किया है। कंपनी ने NHK को लिखित में ये भी बताया कि हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने जमीनी, समुद्री और हवाई हथियारों तथा ड्रोन से यूक्रेनी रक्षा उद्योग से जुड़े उद्यमों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर एक बड़ा हमला किया है। इसमें मध्यवर्ती यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में स्थित JTI का तंबाकू कारखाना भी शामिल था। कंपनी के आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, JTI तंबाकू उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है और सैन्य उत्पादन में कभी भी शामिल नहीं रही है। वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि कारखाने पर कई बार हमला किया गया था और इन हमलों से पहले ही इसका संचालन बंद था। कंपनी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो और अधिक जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। यूक्रेन स्थित जापानी दूतावास का कहना है कि हालिया हमले में किसी जापानी नागरिक के प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। जापान के एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जापान फेयर ट्रेड कमीशन JFTC ने 4 प्रमुख जापानी बियर निर्माताओं की सुविधाओं पर छापा मारा है। उन पर बियर की कीमतों में बढ़ोतरी को समन्वित करने के लिए एक कार्टेल यानी अवैध व्यावसायिक संघ बनाने का संदेह है। टोक्यो स्थित आसाही ब्रुअरीज, किरिन ब्रुअरी, सापोरो ब्रुअरीज और संतोरी स्पिरिट्स नामक कंपनियों की घरेलू बियर बाजार में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। सूत्रों के अनुसार उन पर थोक विक्रेताओं को बियर भेजते समय उनकी कीमतों में कब और कितनी वृद्धि करनी है ये तय करने की साजिश रचने का संदेह है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ाई थीं। गौरतलब है कि कीमतें बढ़ाने का समय लगभग एक समान था। ये चारों कंपनियां जापान ब्रूअर्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार एसोसिएशन की मासिक बैठकें होती हैं और विभाग अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों ने कीमत समन्वय को लेकर गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में बियर जैसे पेय पदार्थों का भी जिक्र था। प्रत्येक कंपनी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। JFTC ने कहा है कि वो मूल्य वृद्धि की लहर का फायदा उठाने वाले इस कार्टेल से सख्ती से निपटने की नीति अपनाएगा। JFTC इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि बियर दैनिक जीवन से जुड़ा उत्पाद है और आरोप है कि ये कार्टेल उन कंपनियों द्वारा बनाया गया था जिनकी बाजार में भारी हिस्सेदारी है। अभियोजकों के समक्ष आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने की संभावना है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाउ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकन वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकन
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तरा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तरा ई देसु का। इत्तरा
1: है क्रिया
4: इक,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबत्सुकन मादे दो इत्तरा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: अनो सुमिमासेन। किनकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
2: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
2: किनकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का?
0: किनकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किनकाकुजी
1: है किनकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
5: 101番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: 乗って
1: है क्रिया
4: 乗る
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: 乗ってください
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुगु मस्सुग।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुग इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: माइक निहाओ ने かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
7: トラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइटो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइटो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: रेडियो जापान टोक्यो।

0: マイク似合うね、かっこいい。
1: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
3: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
4: काइटो माइक के बहरूप की तारीफ करते हुए कहता है,
0: माइक नियाउन है।
3: माइक यहाँ पर जच रहा है।
0: काकोई।
3: उम्दा हो लिया।
4: माइक जवाब देता है,
1: उरेशी ना।
3: मुझे खुशी है।
4: माइक रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर से मुखातिब होता है।
1: अरो सुमिमासेन।
3: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
1: निंजा हकबित्सुकन मादे दो इत्तारा ई देसु का?
3: निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
4: राहगीर जवाब देता है,
2: この道をまっすぐ行ってください。
3: इस रास्ते पर सीधा जाएं।
2: 博物館は左にあります。
3: म्यूजियम बाई जानिब है।
4: माइक कहता है,
1: わかりました。
3: समझ गया।
1: ありがとうございます。
3: बहुत शुक्रिया।
4: काइटो माइक से कहता है,
0: さあ、行こう。
3: ठीक है, चलें।
4: शायद म्यूजियम वहां से ज्यादा दूर नहीं है।
3: जी, स्टेशन से म्यूजियम तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है। और उस रास्ते पर निंजा से मुतालिक अशिया फरोख्त करने वाली या किराए पर देने वाली कई दुकानें हैं। तो आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
0: माइक नियाउ ने, काकोई।
1: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन, निंजा हकबित्सुकन मादे दो इत्तारा ई देसु का?
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई। हकबित्सुकन वा हिदारी नी अरिमासु।
1: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
1: निंजा 博物館までどう行ったらいいですか?
4: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं।
3: निंजा 博物館के मायने है निंजा म्यूजियम। मादे यानी तक और दो इत्तारा ई रिस्का का मतलब है कैसे जाएंगे। आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है। इसके लिए अपनी मंजिल के मकाम के बाद हर्फ जार मादे लगाकर उसके बाद दो इत्तारा ई रिस्का लगाएं। इत्तारा फेल इकू यानी जाना की शर्त या शक्ल है। इस जुमले को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
4: तो सामईन सुनिए और दोहराइए।
5: どう行ったらいいですか?忍者博物館までどう行ったらいいですか?忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?101番のバスに乗ってください。
3: アラビスマカルメキトシリ。
6: あの、すみません。
4: あれ、すにえ、マフキジェガ。
3: いえ、アルファーズ、キシコモトワジェカネグリストマーキエジャテヘ。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: 金閣寺とケセジャンゲ。
3: 金閣寺、京都ケークマシューマンデルカナムヘ。イスマカルメメメワハタジャネカラスタプシャジャラハヘ。
6: 101番のバスに乗ってください。
4: 101 नंबर की बस में सवार हूँ।
3: याकु इचिबान यानी 101 नंबर। बस, बस का जापानी तलफ़ुज है और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई के मायने हुए सवार हूँ।
4: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
5: どう行ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
3: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
5: कोनो होटेल। कोनो होटेल।
3: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
6: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तारा ई देसु का? あの、すみません。 このホテルまでどう行ったらいいですか？
3: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफार्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफार्म को कहते हैं
5: शिंकानसेन नो होम। शिंकानसेन नो होम।
3: तो सामीन कोशिश करें।
4: अनो सुमिमासेन। शिंकानसेन नो होम मादे दो इत्तारा ई देसु का? अनो सुमिमासेन。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
7: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
3: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
7: तो सामने इन सुनिए और दोहराइए।
5: मिगी हिदारी।
3: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मश्क करें।
5: मस्सुगु।
3: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारु यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
7: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
0: माइक नियाउ ने काक्कोई
1: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई। हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
1: वाकारिमाशिता अरिगातो गोज़ाइमासु।
2: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
7: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। काल्टो और माइक ने मिया प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
3: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बायस वक्त बचाया जा सकता है।
7: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
3: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
7: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
3: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
7: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है। अगले सबक में काइटो शुरी के निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करता है।